0: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423।

0: ठगी बठियाई बचाऊ।
1: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहित में जारी संदेश।
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आमी निके निउराइ छौ कि का खेतमा सखलारनका लागि मिनी लैजाइ पर्ना रह
1: आब्दो उराइदा डान्टी बादा
2: ल्या ल्या मै मिनी बनाकर भेजिया तु लैजा दिएस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला पो बा माथिले सब दिए पर टीका हाँ सब दिउ। अय्या दाई सब पका डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटन छै
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मचे सब पका डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कल
3: ना त्याओ काकी तो मुस्कान न्या त्या का स्थान थक बैठो ना बेन काकी मुस्कान न स्वास को न सुटाई हल सब निका राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास को सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना रही ता वो हाथक चुड़िया की निकाल दी ता वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था
2: बैठा भैया सबो कटला था आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर वेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला था मर लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: फिर काकी रामेश्वर मोटरसाइकिल लिखाई कही था झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही था स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें दाता हम कह कर हेरा पुरल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंश उपचार कही जिना रही था हो वहाँ ले जाए पुरल मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
3: ले ले ले काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिस्तर में बैठा रहा रिका झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रहो था मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कभू काल मोल के का समझन स्थान फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकले से हुकर सपो विषार अलग निरलग पहचान कई का सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी क्लाक वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाई क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: मुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के उस तपाटी गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरा दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना, कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर,
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
3: सासानो कुरामा तनाव हुने,
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
3: कुलटमा लाग्ने,
4: छटपटी हुने,
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नु होला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: मकवानपुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउं। विद्यालय भर्ना गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, राहदानी बनाउन, नाबालक परिचय पत्र बनाउन, बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाउँ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है, व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ। थप जानकारीका लागि टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मई नहीं जाय, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाय।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यर्थी खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से टीकापुर में थारू सांस्कृतिक महोत्सव मेला शुरू। थारू समुदाय के संस्कृति संरक्षण के लाग एकजुट होना आवश्यक रहल मंत्री रावल के कहा। टीकापुर में किसानों विद्यार्थियों बीच केरा खेती संबंधी अंतरक्रिया केरा खेती में भविष्य बनाई न सकना कृषि विज्ञ कालू हमाल के कहा। रिनी के आश्रित के समेत मृत्यु पासे ऋण मिन्हा दुखमा साथ देना सहकारी के समेत खाँचो रहल सरकार वाला हुकरन के कहा। उ सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर के निर्वाचित पदाधिकारी हुकरन पदस्थापन। टीकापुर में थारू सांस्कृतिक महोत्सव मेला शुरू हुआ। मेला के उद्घाटन करती सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के मंत्री मानबहादुर रावल से थारू समुदाय के संस्कृति संरक्षण के लिए एकजुट होना आवश्यक रहल बतौती मंत्रालय से सहयोग करना प्रतिबद्धता व्यक्त करने सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्याय प्रतिष्ठान के उपकुलपति रामचंद्र नेपाल एक समेत और के संस्कृति सम्मान कर सकले सकेल संस्कृति के संरक्षण कर सकना बटोले बाटे। नास्त कलेज धनगढ़ी के प्रबंधक शिवपुरी मुरभरी थारू समुदाय के भाषा संस्कृति युवा पुस्ता में पुस्ता हस्तांतरण कर नहीं सकले से संरक्षण कर नहीं सकना बटोले बाटे। टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी से मेला महोत्सव समाज एक ठाव में लन्ना कला धर्म संस्कृति के जगरना करना उलुकल समेत कला उजागर कर पर्ना अवसर जुटना बटोले बाटे। कार्यक्रम में सुदूरपश्चिम पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव दीर्घनारायण कोईराला थारू कल्याणकारी के जिला सभापति दिलबहादुर चौधरी पूर्व सदस्य कैया चौधरी थारू टेलीविजन प्राली के प्रबंध निर्देशक कन्नू नारायण चौधरी मुक्त कमैया समाज के गीता चौधरी लगायत से बोल रहे मालमती चौधरी से स्वागत करल कार्यक्रम संचालन श्री राम चौधरी हो दिब्बा प्रयासी कर रही कल से कार्यक्रम में तमाम के लठुआ नाच हुरदुंगा नाच छुमरा नाच लगायत के सांस्कृतिक फे समेत प्रदर्शन कर गिल रह महोत्सव 5 दिन से चलना बा। टीकापुरमा कृषक हुकन संगे केरा खेती सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम करगिल बा। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय के 16 वार्षिक उत्सव के अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुइलेखो। कार्यक्रममा विगत लम्बा समय से केरा खेती करती ऐलक कृषक उसमित विद्यार्थी हुकन बीच छलफल हुइबा। कृषि विज्ञ कालू हमाल से केरा खेती और खेती से फे समेत सिंचाई कम करला से फेन उत्पादन हुई सकना आंधी हुरी के नुकसान करला से फिर नुकसान से बचना सकना समय नहीं लगना कोल्ड स्टोर नहीं चाहना 12 महीना आमदनी हुईना बाजार खोजे नहीं पड़ना रलकोर से सहज समेत हुई खेती बटोले बाटे। केरा व्यवसाय संघ कैलाली के अध्यक्ष दीपेन्द्र थारू केरा फरैन केल सार्थकता नहीं पैना हो बाजारीकरण के फिर चुनौती रलक बटोले बाटे। वहां केरा खेती के लाग प्राधिकरण के समेत करना एन्ट्रीकरण हो आधुनिकीकरण करती अहिले सफेन जटिलता रहल बटोले बाटे। कृषि विकास बैंक टीकापुर के प्रबंधक दीपेन्द्र रावल से व्यावसायिक परियोजना मन से समेत परियोजना से हुईना फायदा हो ढिटो मूल्यांकन के आधार में कृषि में लगानी करना बटोले बाटे। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के कृषि कार्यक्रम कानून इकाई टीकापुर के प्राविधिक सहायक सबिना कुंवर से विषादी संबंधी तालीम गोष्ठी संचालन करते अलग जानकारी देने बाट कार्यक्रम में नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी से आगामी दिन में कृषक हुकरण के हित में समेत फायदा होना खाल के कार्यक्रम के लाग बजेट विनियोजन करना प्रतिबद्धता कर बाट अंतरक्रिया कार्यक्रम में उठल प्रश्न के जवाब देती टिश्यू कल्चर बेरना उत्पादन करते अलग किसान टेकेन्द्र धामी
पहिले केरा खेती करना किसान हुकरन के समस्या भोगले।

0: एफएम पाचक समयमा केरा खेतीमा आकर्षण बरहल बटोलेबाटै वहाँ कृषक हुकरन के बजार कृषक हुकरन के नियन्त्रण से बाहर रलक बटैती अपना हुकरन कल्चरल करगिल समेत बिरुवा बिक्री वितरण करती रलक बटोलेबाटै कार्यक्रममा विद्यार्थी सुभद्रा उपाध्याय सुस्मिता सिजवाल प्रकाश साउद समीक्षा केसी लोस जोशी लगायत से केरा खेती सम्बन्धी जिज्ञासा धरल रहें। ओसाका कृषक कमल बहाद रावल ओसाका अनिल कुमार से फिर नगरपालिका के कृषक हुकरन के समस्या समाधान के लग पहल कर देना बतैले बाटे। किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्था से श्रीमान की मृत्यु हुई पास अपन सदस्य महिला है समेत ऋण मिन्हा करती तिरल रकम फिर्ता क्रिया खर्च उपलब्ध कराइन कहलवा सहकारी टीकापुर नगर पालिका वार्ड नम्बर 8 के तारा दमाहे 8,43,890 रूपया चेक हस्तांतरण करलबा। तारा है 5 लाख ऋण मिन्हा 3,30,000 रूपया तिरल ऋण फिर्ता करलबा। 8,000 क्रिया खर्च 5,890 रूपया बीमा प्रीमियम फिर्ता करलक बतागिलबा। सहकारी के सदस्य रलक ऋण लेके महिला के मृत्यु हुई पास ऋण के 140% पैना हो श्रीमान की मृत्यु हुई लकमा 100% ऋण मिन्हा हुईना हो क्रिया खर्चा व्यवस्था समेत सहकारी के महिला सदस्य और इनके परिवार हुकरन दुख के बेलामा राहत मिलती रहलबा। तारा दमाई ऋण समझ के तनाव पड़ला को ऋण तिर नहीं पड़ी और तिरल पैसा फिरता आई कहल पास संस्था पर आभारी रहल बटोले बाटे। कैलाली स्थित किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था आपन सदस्य के लग बनल सदस्य सुरक्षा कोष हो बीमा मन से ऐसी सुविधा देती रहलबा। सहकारी से ऐसी कोष में वार्षिक नाफा के 10% हो कर्मचारी हुकर हरेक वर्ष 2 दिन बराबर के तलब जमा करना बतैती आयल बाटे। बिना धितो ऋण पैना महिला हुकरन के प्रति लाख 850 रूपया के बीमा करती रहलबा। टीकापुर नगर पालिका 8 के वार्डाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुला आर्थिक स्थिति कमजोर अलग महिला सदस्य हुकरान ऋण मिन्हाओ फिर्ता भारी राहत मिलती रहल बटोले बाटे। सहकारी हाल 34 करोड़ रूपया सुविधा में खर्च कर सकलबा। सहकारी नारायणपुर शाखा के प्रमुख नवराज देवकोटा ऋण से मृत्यु पाछे के लेहल ऋण कैसे के असूल करना कहना चिंता लगना उसक विधवा तुहरा हुकरन के आगे ऋण मांगे जैना फे अमानवीय व्यवहार जैसी लगती रलकमा बीमा और सदस्य सुरक्षा के कोष के अवस्था रलक पाछे ऋण तिर नहीं पर्ना उल्टे पैसा पैना रलक ओसे मानवीय व्यवहार जस्त लगती रहल बटोले बाटे। सहकारी से समेत महिला समूह के बचत ओ बिना धितो ऋण के कारोबार करना ऋण मिन्हा ओ सुविधा देना करते रहलबा। समूह में नहीं बैठना ओ धितो र धरल ऋण फे समेत लेना होकल से सुविधा नहीं पैती रहल बतागिलबा। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस। जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्रामपछि फेरि स्वागतमा सामुदायिक पुस्तकालय टिकापुरका नवनिर्वाचित पदाधिकारी हुकरनकी शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्नबाटै सामुदायिक पुस्तकालयकी छैठौं चुनावी साधन सभामा श्री निर्वाचित पदाधिकारी हुकरा शपथ तथा पदभार ग्रहण गरलबाटै साधन सभाकै अध्यक्षमा जगन्नाथ प्रसाद रिमाल, उपाध्यक्षमा मोहन प्रसाद उपाध्याय, सचिवमा दीपक बोगती, सहसचिवमा अनिल कुमार चौधरी, उपकोषाध्यक्षमा प्रतीक्षा कुमारी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुलबाटै, उपसभाकर्के सदस्यमा दीर्घबहादुर तिरुवा, मोहन प्रसाद शर्मा, जनक बटाला, दीपक राज बराल, इन्द्र कुमारी उपाध्याय, कञ्चन चौधरी चैनहुलबाटै। पदस्थापन कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जा राज्य मन्त्री चन्द्रसिंह भट्टराई, पुस्तकालय अब्बा के परिवेशमा सुहैना बनाई पर्नमा जोड़ दिएबाटै भट्टराईसे पुस्तकालयमा पाठक के समेत संख्या वृद्धि गर्न रचनात्मक कार्यक्रम समेत संचालन गर्न सुझाव दिएबाटै। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि टिकापुर नगरपालिका के पूर्व नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल रहन कलसे, वहाँ पुस्तकालय के विद्यार्थी औरा क्रियाकलाप हे समेत अध्ययनो सिकाई के थलो बनाई पर्न बतोले बाटै। कार्यक्रममा पहिल सत्रा के अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष तारा प्रसाद जोशी कर रहन कलसे, संचालन निवर्तमान सचिव देव बहादुर शाह कर रहन। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 शक्तिमा बाल बालिका लक्षित स्थानीय तहके बजेट नीति तथा कार्यक्रम विषयक संवाद कार्यक्रम ओराइलवा विकास केलाकी युवा एकेबद्धता यार्ड धनगढ़ी ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालके आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम आयोजन गर्लक हो। कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी, वार्ड नम्बर 7 के कार्यवाहक वाडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वड़ा सचिव कमला पोखरेल, कर्णाली माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक उपेन्द्र खड़का, अभिभावक तथा बाल बालिका उल्लेखनीय सहभागिता जनाएल है। संवाद कार्यक्रम में सहभागी बाल बालिका अभिभावक तथा सरकारवाला हुका वार्ड नम्बर 7 के बाल बालिका हुकरन के समस्या उठाएल है। वहां हुकर कर्णाली माध्यमिक विद्यालय के शौचालय अभाव, कक्षा कोठा में पर्याप्त फर्नीचर तथा डस्टबिन के कमी, स्वच्छ पीना पानी, स्वास्थ्य सामग्री के अभाव, सड़क किनारमा वृक्षारोपण, नाला सरसफाई लगायतकी विषयमा समेत प्रश्न जिज्ञासा गुनासा गर्ल है। सहभागी हुकरनके उठाएल सवालके जवाब देती कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजीसे टिकापुर नगरपालिकाके से बाल विवाह न्यूनीकरण के लाख माध्यमिक विद्यालयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्तिरहल जानकारी दिएबाटै वहाँ बाल बालिका हुकरनके मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श, अपाङ्गता रहल बाल बालिका हुकरनके सहायता सामग्री वितरण, वार्ड नम्बर 7 और 9 बाल मैत्री पोषण मैत्री वाडा घोषणा अभियान, विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम तथा किशोर किशोरी हुकरन के लाख प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन करगिल कार्यवाहक वाडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, बाल बालिका हुकरनके शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास प्राथमिकता धरके अभिभावक शिक्षा कक्षा सहित तमाम कार्यक्रम वाडामा संचालन गर्न जानकारी दिएबाटै उहाँ आगामी दिनमा विद्यार्थी हुकरनके उठाएल मागके सम्बोधन गर्ती पढ़ाई शिविर न्यानो कपड़ा वितरण हो विद्यालयके आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न प्रतिबद्धता जनाएलबाटै। कार्यक्रममा बाल बालिका हुकरा स्थानीय सरकारकी योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्न आवश्यकता हो सरकार समेत समावेश हुइपर्नमा जोड़ दै गेलबा। सहभागी हुकरा बाल बालिका हुकरनके आवाज स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न सकेले सकेल बाल मैत्री पालिका घोषणा प्रभावकारी बन्न धारणा फेर व्यक्त गर्नबाटै यार्ड धनगढ़ी से ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालके सहयोगमा संचालित बाल संवेदी केलाक एकीकृत विकास परियोजना हाटीमालो कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली के टिकापुर, भजनी, घोड़ाघोड़ी, गौरीगंगा नगरपालिका तथा कैलाली गाउँपालिकामा बाल संवेदी संगे सम्बन्धित तमाम कार्यक्रम संचालन गर्दै आएलबा। कार्यक्रमको सहजीकरण परिचालक रतनलाल चौधरीको भए। झकेरी गाउँपालिका अछामसे अबसेसन चर्के सार्वजनिक विदा नै दिन निर्णय करल बा। गाउँपालिका कार्यपालिका के निर्णय अनुसार अटवारके विदा भर यथावत धरल बा। गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासक अधिकारी नरेश बहादुर बोहरा से जारी विज्ञप्तिमा अटवारके ओ सञ्चर के दुई दिन सार्वजनिक विदा देले से सेवा प्रवाह तथा शैक्षिक पढ़न लिखनामा समस्या आयल उल्लेख कर गेल बा। वह कारण से अटवार के विदा कायम धरती सञ्चर के विदा कटौती करना निर्णय करल जना सकल बा। गाउँपालिका के अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउत के अनुसार 31 जेठमा सम्पन्न कार्यपालिका के बैठक के निर्णय अनुसार असार 1 गते से नै उ व्यवस्था लागू हो सकल बताइल बाटै। कैलालीकी चुरे गाउँपालिकामा असार महिनामा भर समेत सञ्चालनमा ऐना बटवागिल बा। मंगलबारकै गाउँपालिका से एक सूचना जारी गर्थे गाउँपालिका के कार्यालय असार महिना भर विदा के दिन फेर सञ्चालन गर्न उल्लेख गर्ने बाटै। गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी धर्मराज खत्री से जारी सूचनामा आर्थिक वर्षा के अन्तिम महिनामा हुन समेत काम के चापो से अग्राही हुकरन होइन असहजता है मध्यनजर करती असार महीना भर सार्वजनिक विदा देना फे गाउँपालिका कार्यालय से संचालन में समेत भर रहना उल्लेख करल बा। खोजखर में एक गरी फेनु विश्राम विश्राम पाचे फेर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: वर्षिनी विश्वभरी नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक शिक्षक समाजसेवी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
5: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैनै जाइ उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर्छु
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोहर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तू मैं अब ही जाए।
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
9: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071724 ओ 9846777417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। यह असार के तेसरा सप्ताह से लेके सुकुम्बा सुकुरन लाल पूर्जा वितरण शुरू करना कहल बा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल से एक बारे में जानकारी करा सकल बाटे। आगामी आर्थिक वर्ष के 83-84 के वार्षिक विनियोजन बजट ऊपर प्रतिनिधि सभा के सांसद हुकरा उठायल प्रश्न के जवाब देती मंत्री रावल से सुकुम्बासी उकरण लाल पूर्जा वितरण करना तैयारी समेत रहल जानकारी दिले बाटे। अमेरिका और ईरान के आपन युद्ध अंत्य करना समझौता के अंतिम पाठ बुधवार सार्वजनिक करल बाटे। अधिकारी हुकरन के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियान दुनू से जाने समेत समझदारी पत्र में समेत डिजिटल हस्ताक्षर कर ईरान के परराष्ट्र मंत्रालय से ई समझौता बुधवार से लेकर नई लागू हुसेकल जानकारी करा सकल बा। अमेरिका और ईरान बीच के अंतरिम शांति समझौता में समेत औपचारिक हस्ताक्षर भर शुक्रवार स्विट्जरलैंड में होते रह बा। फीफा विश्वकप फुटबल के प्रतियोगिता में आज खुल खेल में इंग्लैंड से क्रोएशिया है पराजित करल बा। अमेरिका के दलास रंगशाला में खुल खेल में इंग्लैंड से 4-2 गोल अंतर से क्रोएशिया है पराजित कर सकल बा। खेल के 12 मिनट में इंग्लैंड के लाकी हैरी केन से पेनाल्टी मार्फत गोल करती टोली है शुरूआती अग्रता दिहायल रहे। 36 मिनट में क्रोएशिया के लाग मार्टिन बुटुरीना से समेत गोल करती बराबरी में लान रहे। 42 मिनट में इंग्लैंड के लक फे समेत हैरी केन से व्यक्तिगत गोल करती पुनः टोली है अग्रता दिहल पाछे हाफ में समेत थपल अतिरिक्त समय में क्रोएशिया से जवाफी गोल लौटाएल रह। वकलाक समेत पीटर मुसा से गोल करल से फेन खेल पुनः बराबर में आयल रह। उसक खेल के 47 मिनट में जूद बेलिंगहाम से फिर समेत गोल करल पासे इंग्लैंड फिर से अग्रता कायम करल रह। ओकर पासे खेल के 58 मिनट में मार्कस से फिर समेत गोल करल पासे इंग्लैंड के अग्रता दोबर बनाये रह। ओकर पासे खेल में कौन फिर गोल नहीं हुलो खेल इंग्लैंड से अपन पक्ष में पारल बताइल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। सीकापुर में थारू सांस्कृतिक महोत्सव मेला शुरू। थारू समुदाय के संस्कृति संरक्षण के लाख एकजुट होना आवश्यक रहा मंत्री रावल के कहाई। सीकापुर नगर पालिका और विद्यार्थी उत्तराण बीच केरा खेती संबंधी अंतर क्रिया केरा खेती के भविष्य बनैना सीखना कृषि विज्ञ कालू हमाल के कहाई। रिनी हुकरण के आश्रित हुकरण की मृत्यु पाछे रिनमिन्हा दुख में साथ देना सहकारी के खाँचो रहल सरोकार वाला हुकरण के कहायो। सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर में निर्वाचित पदाधिकारी हुकरण के पदस्थापन। लिटा बक्लक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में
11: असार 6 गते पहिलो शनिवार
10: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छाला में एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबी को समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छाला को घाउ ठीक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठीक नहुने छाला सम्बन्धी रोग को समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
12: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
10: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
13: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
14: अजी गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
13: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन लबाटी
14: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गल गहना बनाई।
15: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
16: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
17: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान गैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: हेरामे दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर के गर्नु यो भर नभएको जिन्दगी कति बेला के आपत आइपर्छ थाहै हुँदैन। सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
3: हो नि बिरे। मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो। यसो के इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न।
4: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या। यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरिदिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले?
3: के गर्छ र सन मेडिकेयरले?
4: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेनक्रिया टाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
3: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त।
4: हो कान्छा, अपरजट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर। कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले?
3: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा।

0: टिकापुर
1: प्रोप राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 9844848673 र 9814680204।
2: तहरा राजा जी का दिलुआ तुत जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ तुत जाई।
3: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
4: मुस्कान रिछाई, घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतो बस्ता खारन का लाग मिनी लै जाई पर्ना रह।
3: आब्रो मराइदा जान्छी बादा
4: ले ले, वही मिनी बना कर दिए तू लै जा दिएस ना।
3: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला को बा माथी ने सब दिए पर टीका। हाँ सब दियो। अय्या दाई सपका डरल
4: दाई खै खै कहाँ काटो छाई।
3: यहाँ दाई ये दाई नाजम का डरल।
4: अरे लियो हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सपका डरलस लियो हाली।
5: काबिल काकी काबिल
4: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कल
5: ना त्याओ काकी वो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना। बेन काकी मुस्कान न स्वास्थ्य का न सुटाई हलचल निकल रखना।
4: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो टा
3: बैठा।
5: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फाफर बना दी टा वो हाथक चुड़िया की निकाल दी टा वाकत कटला हाथ भर नहीं चला ना।
4: बैठा भैया सबको कर लग ठाक आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकलना हो कि
5: नहीं नहीं काकी सबको कट लग ठाक आंजर पांजर कटना डगना सूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
4: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही नितार खा वाकर सबको कट लग ठाम और लगा दी उठा ना नानू
5: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
4: बुझनु नानू बुझनु।
5: फिर काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही था झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिला स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गाँव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही था स्नेक बाइट नेपाल .org का वेबसाइट खोलती कर तुम डाटा हम कह कर हेरा पड़ल। हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंशक उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ल मुस्कान हमें।
4: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
5: लो लो लो काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही खड़ा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए
4: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
6: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रहो था मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सपो विषाण अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
4: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ न बचाई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सकती था सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मन एक जिनकी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई खा पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा निपैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाकर आन्से के कत्रा सुघर बनाकर ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मई नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: उही सबै पेपर अरूको सकिया हो
1: सकियो
0: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस ड्राइभर ब्लक गरीबर आयौ
0: उही बैंकमी
1: त्यही अद्दु पढ्यो
0: त्यो त अद्दु पढन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैङ्कलाई नै जानकारी दिनु पढन्छ र आफ्नो बैङ्क खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
1: सतर्क रहौ ठगी बठेई बचौ
2: सिद्धार्थ बैङ्क बठेई जनहितमै जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
5: टिकापुरको विकासका लागि के गर्दैछ नगरपालिका
6: नगर विकासका लागि नगरवासीको दायित्व के हुनुपर्छ
7: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर
5: टिकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
8: बिहिबार दिउँसो 3 बजे
5: सुन्न सक्नुहुनेछ

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 4-5-6 और 7।

0: ट्राफिक कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या यो टीकापुर मा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर मा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848571828 आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना कटा सुगुर बनेला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

हजुर जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझै के सलाह के बैठक सक्कु सक्कु रेडियो प्रेमी वैगर श्रोता संगे अपन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत मैं मिशन और मैं टेक में बैठ के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर और मई बाटो अपनी अपने संग्रह मैं मिशन संघारी अपने कार्यक्रम में सहभागी जनेबी कार्यक्रम आईबी का नाम है अपने मैगर अर्जी करम मैगर अनुरोध करम और मैगर मैगर निवेदन करम का नाम है अपने जानकारी कहना चाहम विशेष करके अपने कन तो अपने हमन फटाफट जहां डायल कर भी 9015-61-255 कोई भी टैलेंट बा गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर चिड़ी चुरुगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी प्रतिभा कोई भी टैलेंट कोई भी बाकल से अपने हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई सुनाई क्लग तो अपने हमारे स्टूडियो के लाइन एकदम खुला बस 9015-61-255 के लाइन हमने खुला के लिए बाटी फटाफट डायल कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जनेबी का नाम है अपने मेगा निवेदन करना चाह रहा हूं तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी अपने हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम है अपने जानकारी करती अठी कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर बैठो रमाइलो गीत से गीत के पास में बाटू डायल करते कर भी 9015-61-255 लाइन खोलेगा

हजूर जब जब के रख पतिया लड़खराए तो याद इठो। बिल्कुल ही रमाइलो की जोली कार्यक्रम बाथरूम मिशन में के साथ देते हैं बाबू रत्नापुर मगर और यह रेडियो टीकापुर एफ एम 101 MHz। वैसे हमारा वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफ एम एप्स हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत पे अपने के हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकती का नाम दुकान जानकारी कर दी बाटू। जे जहां भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाई कार्यक्रम में आईवी का नाम ऐप दुकान जानकारी क्रम विशेष करके अपने को हमारे रमाइलो का फ्री का नाम ऐप दुकान मैं अर्जी अनुरोध निवेदन करना चाहम तो फटाफट चाहिए अपने डायरेक्ट हमारे स्टूडियो के लाइन एकदम खुला बा 091-5-61-2 सुनने के लाइन एकदम खुला बा। संगारी बरखा के समय बा खेतवा में काम करना बेला बा किसान दाजू भाई होंगे खेतों में पेलल हुई भी कोई सेक डाल हुई भी शायद लागर कहूं कहूं सेकल देखते होगा तब मारे कहूं सेकल हुई भी कहूं शुरुआत करना तरखर में ही भी कहूं अभिन शुरू नहीं कर ले भी तर आप तो चाहिए कुछ कुछ तैयारी जरूर करट हुई कना लागत में तो जे जहां से जसी के हुई चाहिए कार्यक्रम सुन के चाहिए सात देवी का नाम ऐप दुकान जानकारी करते बारो टोकल चाहिए हमारे लाइन एकदम खुला बा 091-5-61-2 अर्थात 091-5-61-2-55 लाइन एकदम खुला बा का नाम जानकारी करते बारो फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम में अपन टैलेंट गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला सारी शेर चिड़े चुनगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल कैको कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाएगा कार्यक्रम में सहभागी जनेबी का नाम ऐप दुकान जानकारी करते बारो तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेबी कर भी अति

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछा फेन्छ स्वागत भयो कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाथरूममा मिसन और मे के भई साथ देखै टेक्ने बैठके बाबु रत्नापुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz अस्तिका हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत फेसबुक हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइसक ठिकानामा एप दोकान जानकारी कति बाटो जे जहाँ हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यवसाय में यात्रा में जहां कार्यक्रम में सहभागी जनाबी अपन टैलेंट अपन प्रतिभा प्रस्तुत करेगलग अपन प्रतिभा सुनायेगलग रेडियो सुन का बैठल संपूर्ण मैगर मैगर श्रोता सगरे अपन टैलेंट अपन प्रतिभा सुनायेगलग कार्यक्रम में सहभागी जनाबी का नाम आप लोग जानकारी करती बारू तो करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा कर देवी हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाएगलग तो कार्यक्रम में कर भी सहभागी जनते कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता के खाचो बार रमाइलो सहभागिता के जरूरी बात तो फटाफट डाल कर भी ईद दोपहर समय अलसी समय अच्छी समय है कुछ सत्सम रमाइलो करेगला कार्यक्रम में सहभागी जनाए का नाम जानकारी करना चाहम अब टिप्रे गीत जोड़ हमने अपने हुकन बिल्कुल रमाइलो गीत बर्खा के समय थे आज कल बात हमारे बिहार लगाइना बेला बात हो लगेबो बिहार छुपुक छुपुक छुपुक छुपुक बिल्कुल रमाइलो गीत बा

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत के पास एफएम स्वागत कार्यक्रममा बाछुमा मिशन निकै साथ दिते बाबु रत्नापुर मगर अघि हो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत फेप्नु कि हामी सुने सक ठिकानामा जानकारी कति बाटो दुपारिक समय हो दुपारिक समय अल्छी समय अल्छी समय हक कुछ हदसम्म रमाइलो करेक्ला कार्यक्रममा सहभागी जनाई 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 गीत गाई जाना ठेबी गीत गाई आई गजल के जाना ठेबी गजल के आई मुक्तक भावना चुटकिला सारी शेर के जाना ठेबी आई अपने गए मतलब अपने जा जन थी वो चीज सुनाएगला कार्यक्रम में सहभागी जनाई का नाम है आप लोग निवेदन करम का है कि अपने हुकन के संगे हमें रमाइलो गप कर एक लग बाटी रमाइलो बातचीत बटो एक लग बाटी तो अपने हुए हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाएक पना एकदम जरूरी थी तो फटाफट चाहिए डायल कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाएक लग कार्यक्रम में आएक लग 091-5-61-255 के लाइन एकदमै खुल्ला बाका नाम प्रोग्राम कहना चाहम फटाफट डायल गरी कार्यक्रममा सहभागी जनाएक लग अपने को हमारा रमाइलो गफ हुई रमाइलो बात हुई यी गर्मीमै महिनामै गर्मी मौसममै यी कामके बेलामै अपने हुकन शीतर शीतर महसुस करती मै अपने हुकनका सँगै रमाइलो रमाइलो गीत सुनेन पर बाटो रमाइलो रमाइलो गफ गर्न पर बाटो तो डायल गर्दै कर्बी कार्यक्रममा सहभागी जनाइते कर्बी करिब करिब 1:45 बजेसम्म ठिक ठाउँकी जोडी गीतके पासमा हुने बाटो डायल गर्दै कर्बी 091-5-61-255 लाइन खुलेबा

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रम आदो भाव कुछ बनाही प्रेम के रोगी हुई गीत सुनते सुनते अति बड़े के व्यापारिक विधेयक यानी कि व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गल बा अपने डायल करते कर भी 091-5-61-255 के लाइन खुला बात तब समय एक खेती व्यापारिक विश्राम और जाए व्यापारिक विश्राम के पास मैंने बाटू रेडियो सर के कहो फिर नहीं जेबी तब समय लगे एक खेती शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ब्रेक के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुला बा
1: आओ आओ तू पहले चाइना में ढील कर लो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
2: कुछ नहीं हुई सर पायलट के 15 सफवा रख लू सर लग के घूम रहते हो जैसे छह साल लग में तो हलचल नहीं कर मोर सपो का के था पहले तो पहले जाके
1: मोर सपो आना चलेना तो नहीं चले ना
2: नहीं चले ना सर
1: विद्यार्थी भैया बाप मुखरा मुरा से कह रो मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से थी वाकर में रहा 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंग तो हाँ साले पकड़ा नहीं भी
2: सर नो सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास संके सप्पा दस सकत वह उससे मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी गेंद तो इतना मल अच्छी ले चला का मुआल नहीं मुआल कहीं का जात से भी था
3: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वह मार्गी सप्पा है ना पकड़ना खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासी सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगला आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर से बिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ए रुक रुक रुक
7: के भयो किन कराएको यस्तो
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
8: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र
6: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
9: अझै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-2-3 #डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया। मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइबो पाछे से शुरू करल मने घर सिजा सकल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481-43-26।
6: जानकी गाउँ पालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध
7: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन धुम्रपान मद्यपान सुतिजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरुद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
6: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति।
8: ए बा आइगई क्या आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
9: तनखा खाइकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
8: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
9: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त हैन बुवा। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 सम्पर्क हर्या।

हजुर, व्यापारिक विषामकै पाछे पनि पुनः स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटोमा हामी शर्मीको साथ दिँदै बाबु रत्न पूर्णकर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तै हाम्रो वेबसाइट www.tikapureFM.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत व्यापक हाम्रो सुन्ने सकिए कनामा एपोकन जानकारी कतिबाट जे जहाँ हुई खतमे बारीमे दुकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे विद्यालयमे यात्रामे जहाँ हुई जुन ठाउँमा हुई वही ठाउँ से कार्यक्रम सहभागी जनेवी कनामा एपोकन मैगर अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहूँ तो कार्यक्रम सहभागी जनाइटे कर्वी कार्यक्रम आइटे कर्वी अपने कोरहमा रमाइलो सहभागिता के खाँचो बाकना जानकारी गति सुन्ने 91-561-255 के लाइन खोले तब सम लगा ठेक ठोक गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटो डायल करते कर्वी 91-561-255 लाइन खुलेगा।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत के संगे संगे लगभग कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे राखेला बिदा मांगने बेला हो गिलवा हमारे यात्रापट लक्ष्म रेडियो सुन के साथ दिले आप लोग धन्यवाद टेक्नोवेट के साथ दिले बाबू रत्नपुर मगर धन्यवाद मोर आवाज अपने थन पुगा दे लेख में अत्रापट बाउरे कार्यक्रम में भेटने बाचा करती आज कार्यक्रम अतनी और एक ठो गीत छोड़ती और कार्यक्रम में भेटने बाचा करती मई मिशन आगा छ हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पर शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सेकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दु खोज्जाछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागिबर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बचौं।
1: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने कुला सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल संपर्क पत्र और नेपाली पात्र में फेसबुक डिजिटल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से कक्षा 11 और 12 की छात्रवृत्ति के लिए पुनः आवेदन खुला। प्रदेश सरकार शौर्य साधन खरीद करना 24 करोड़ छुटेल। सभामुख संघ यूए के राजदूत के शिष्टाचार भेट। ओ भैरव में 41.5 डिग्री तापक्रम। ढेर सिंह जिला में भारी वर्षा। पूरा खबर शैक्षिक सत्र 2083/84 में कक्षा 11 और 12 के छात्रवृत्ति के पुनः आवेदन देना काठमाण्डु महानगरपालिका सूचना जारी करलबा। महानगरपालिका के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के पहिलो दोस्रो सूची में मनोनयन में नेपालको को अंतिम मनोनयन रैप अप समावेश हुना। चिन्ह परीक्षार्थी को विषय हो शिक्षण संस्था की प्राथमिकता क्रम चरण करके अनलाइन फारम भर्ना सूचना कलबाट यह वर्ष केलाक महानगरपालिका भीतर 145 शिक्षण संस्था में 4857 कोटा निर्धारण में कलक निर्धारित कोटा मध्य पहिलो मनोनयन सूची में से 3051 विद्यार्थी। दोसरो सूची में 203 जना करके 3281 विद्यार्थी छोरण ढुल्पास। बाकी 1576 कोटा के विषय व शिक्षण संस्था की प्राथमिकता छन्नावसर प्रदान कलक परीक्षा समिति के संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकाल जानकारी दिलबाट महानगरपालिका अन्तर्गत संचालमरलक संस्थागत शिक्षण संस्थामा प्रथम मनोनयन सूची और दोस्रो मनोनयन सूची में तोकलक समयावधि भीतर भर्नाकुलक विद्यार्थी की विवरण शिक्षण संस्था अध्यावधि करलक आधार में बाकी रहलक। शिक्षण संस्थागत विषयगत सीट संख्या मंत्री मनोनयन रैप अप करकला सूचना प्रकाशन कलबाट आवेदन आज बिहान के 1 बजे से खुला हो सकल। यह असार 8 गते संझे 5 बजेसम आवेदन दे सकना पर्ना हुआ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष में शहरी साधन खरीद करना हो 24 करोड़ 4,10,200 रूपया विनियोजन कलबाट। सरकार हम मंत्रालय उद्योगसीन कार्य कलाक मोटरसाइकल स्कूटर और 3 करोड़ पर 4 पांग्रे शहरी साधन खरीद करना बजेट छुटेल। प्रदेश सरकार प्रदेश सभा के लाख 1 गाड़ी खरीद करना 1 करोड़ छुटेल। रलासेफे स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीद के लाख 10,64,000 बने बजेट विनियोजन करबाट। बजेट में प्रदेश लोक सेवा आयोग के लाख जीप कार खरीद करना 33,44,000 विनियोजन करलक। मोटरसाइकिल और स्कूटर के लाख थप 2,28,000 छुटल बाट। खोज खबर में एक विश्राम विषम पास फिर से विश्व त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्य

0: सेवा
1: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो नि करत का कैन हो का
2: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबु कहो र घुम जाए त था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98484 53 26।
5: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन नव प्रवर्तन के क्षेत्रमा लगानी करके देश के अर्थतन्त्रमा सुधारका रसिकना बोटेरोबाट प्रतिनिधि सभाकी आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्रालय के ऊपरसलफलमा उठल प्रश्न के जवाब दिती उहाँकै संघीय प्रदेश स्थानीय तीन तहके सरकारमा आफ्न पूँजीगत बजेटले 1% रकम विज्ञान तथा नवपरिवर्तन विकासमा विनियोजन गर्न सुझाव दिलबाट इनोभेटिभ आइडिया हुलक जनशक्ति सृजनात्मक कार्य गर्न उपयुक्त वातावरण सहित के स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नै नवपरिवर्तन हुलक बोटी मन्त्री पुन विगतमा अनुसन्धान गर्न कागज थन्कैनाकेले काम हुटिरहल धारणा व्यक्त कलबाट सरकार औद्योगिकरण अर्थतन्त्रमा सुधारमा जोड़ दिना बुटी उहाँके बजेट के 1% रकम विनियोजन अवकुला प्राप्त अलग विचार व्यक्त कलबाट नव प्रवर्तन प्रभावकारी वरिनाशक को सहकार्य सहयोग आवश्यक अलग बुटी मन्त्री पुन विज्ञान तथा नव प्रवर्तन के विषयमा कार्य शुरू गर्न यससँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीति बनाई पर्नामा नव प्रवर्तनसँग सम्बन्धित देवदर्शन विधागत नौठोनीमा अलि बन्न तयारी हुनसेफे उहाँ जानकारी दिएबाट उहाँके अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि तथ्याङ्कन नेपाल सरकार कार्य विभाजन निमावली 2083 के निमावली आधारमा के मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नौठो निमावली बन्न तयारी तलक बुटीलबाट मन्त्री पुन विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन ऐन 2083 विज्ञान ऐन आणविक ऊर्जा ऐन राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास ऐन आणविक ऊर्जा ऐन जैविक सुरक्षा तथा जैविक प्रविधि ऐन रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन वैज्ञानिक मापन तथा मेट्रोलोजी ऐन विज्ञान तथा प्रविधि तथ्याङ्क ऐन लगायत थियोसिन आवश्यक ऐन लैन योजना कलबाट उहाँके मन्त्रालयकी कार्य प्रभावकारी बन्न सर्वप्रथम पूर्वाधार निर्माणमा कानून तर्जुमा आवश्यक लगबुटिलोबाट नेपाल देशिन विकासोन्मुख देश नव प्रवर्तनमा जोड़ देहेपर्ना धारणा थर्ती मन्त्री पुन बोटेलोबाट उहाँके युवा हाँसो देशमा रोजगार पैनाबाट देशकै अर्थतन्त्र वृद्धि हुना मन्त्री नव प्रवर्तनकै विषयमा नेपालका उद्योगपति बुझ्न आवश्यक देखलक धारणा व्यक्त कलबाट। सभामुख डोलप्रसाद डीपीआरएल संघ नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएके राजदूत अब्दुल्लाह जरवान अल समिसिया शिष्टाचार भेटवाट कलबाट भेटके क्रममा नेपाल ओ यूबीसके द्विपक्षीय सम्बन्ध संसदीय सहयोग व्यापार लगानी पर्यटन श्रम हवाई सेवा प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता लगायत विविध विषयमा छलफल हुलक रह सभामुख अर्याल यहाँ नेपाली श्रमिक व्यापार तथा लगानीकी दृष्टि नेपालकै महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रलाई उल्लेखती दुई देशकै बीच आर्थिक तथा विकास साझेदारी थप विस्तार कल्पना आवश्यकता आउनेल उहाँकी युएके भिसा प्रक्रियामा नेपाली नागरिक मस्ते प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा मंगना अब व्यवस्था पूर्ण विचार गरे सहज बनाइन अनुरोध कलबाट सभामुख अर्याल नेपाल सरकारमा हाल सार्वजनिक कलक शासकीय सुधार के सही कार्यसूची मार्फत सेवा प्रवाह थप कार्य प्रभावकारी पारदर्शी डिजिटल टाइस तथा नागरिक मैत्री बनिना दिशामा कार्य आँखा बढ़ाउन जानकारी दिला संघ नेपाल लगानीकर्ता के लाग अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहला कुलेकर्ती उहाँ यो भिजन 2021 संग तालमेल हुनाकर्के लगानी पूर्वाधार पर्यटन ऊर्जा तथा प्रविधिकी क्षेत्रमा सहकारी विस्तारको नायक हकल सभामुख कार्यालयकी आगामी सेप्टेम्बर 23 तारीकमा पोखरा दुवै पोखरा दैनिक सीधा उडान सञ्चार स्वीकृति प्राप्त कलक

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: ओए रजनी वहाँ 62 नंबर लट्ठी बा लिखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं कातर लट्ठी खा देती अब ना
0: एक तो सपा बा का मुर्गी ना खा रखे लट्ठी से डुरेले से बक्सा की आनो हारी सट्टा
1: तापन हिस्सा चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कलटी भगाई दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआदी और खादी कहीं का भगाई खोज लखो का
1: आर मैं कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सीधे निचा करके फलाम को जारी लगा बात सप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना ना दाखी दूर रहना
0: हो बिना तो क्या करना हो सप्पा देखती की डर नागा लगना रही था देव सप्पा तो अपन ना घूम का बारी वो कर लिया
1: हमारे चल सापन से डरे ना नहीं होगी मुखरत ही अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पोती रक्षा करस लाख व अपन बचाव करस लाख काम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नहीं लगाई व नहीं जीस के साप मने देखा डरे था निचलाख दूर रहे साप नि दस्त तर मुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्कन अब घाँस काट बेल ख्याल बेल ल्याङ्गा बेल छुबेको छ मनै मही मारकलाकबाट कना सबस र पट्टी रक्षा गर्न क्रममा साप दस लाख रहेछ मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रहेछ ओसीको कर बेल फेर साप दस लाख रहेछ
3: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: सुन्टो कि नै वानन्दे ग्वज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
6: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ
5: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन लबाटी
6: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइ औ जाइ कहु सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
5: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846239261
7: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकला सुकाय हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
8: मैले चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ तलाई
7: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको छ त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
8: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमा मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
9: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
10: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरौला रोड टिकापुर कैलाली
11: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध गरी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फ्यो होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: त कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कतरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला जसका टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: వాసుదేవం భజ వాసుదేవం భజ వాసుదేవం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయ పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశ నాశాయ గోవిందాయ నమో నమః.
1: అబ చారు అధ్యాయ శ్రీమద్ భాగవత్ మహాపురాణ భాగవత్ కసరి సృష్టి భయో భండి దిశేకా లాగే మా ఏక దిన నారదకు వ్యాస్కు అప్రసన్న చిత్త భైర సరస్వతి నదీ కినార్ మా బెదివ్యాస మహర్షిలే ఆప్న మళ్ళా అప్రసన్న చిత్తమా ప్రయోజన గరిను భయకోత్యో ధరి ఈ ప్రకారలే బేత్కు భాగ్ వివాదన గరుణుభో తేస్మా బేత్కు వివాదన కు బారేమా రిగ ఏజు శ్యామ అథర్వ భన్ని చార్ వేద్ బ్రహ్మాజీ కా ముఖార్ బింద్ బాట తేడి భయకు తర అపౌరుషీయ వేద్ భన్స మహా వేద్ జో హో త్యో చే అపౌరుషీని హో तर ते वेद को विभाजन को खातिर वेदव्यास महर्षि ने धेरै प्रकार को संशोधन पक्ष तैयारी गर्नुभयो र अनि सत्र पुराण त्यहाँ छवटा शास्त्र तैयारी गर्नुभयो वेदबाट त्यो छवटा शास्त्र भनेको वेदांत न्याय सांख्य ज्योतिष व्याकरण मीमांसा आदि तर त्यसबाट पनि उहाँलाई अप्रसन्न भयो चित्त प्रसन्न पार्नका लागि के काम गर्नु पर्ला भनेर फेरि सत्र प्राण तयारी गर्नुभयो त्यसबाट पनि मन अप्रसन्न नै रह्यो व्यासलाई अनि फेरि त्यसैलाई प्रयोजन गर्नका लागि अर्को प्रकारको जब शास्त्र तयारी गर्नुभयो जुन शास्त्रको पद्धति हो वेदव्यास महर्षिले उपपुराण संहिता पञ्चम वेद भनेर महाभारत त्रिसूत्रको अधिकारको लागि तयारी गरिभएको छु तर पनि उहाँको मन अप्रसन्न भयो केबाट प्रसन्न होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेलामा नारद नाम गरिएका ऋषि डुल्दै डुल्दै उहाँका सान्निध्यमा आउनुभयो सरस्वती नदीको किनारमा वेदव्यास महर्षिले आज्ञा गरिभएको छ अहो महाराज वेदव्यास भनेर नारदले भन्नुभयो तिमी धन हराएको मानिस जस्तो चित्तमा घाउ परेको व्यवहार जस्तो चारित्र समस्या पर्न गएको व्यक्ति जस्तो बाछोबाट हराएकी माउ जस्तो माउबाट हराएको बाछा बाछी जस्तो देखिएको छ तिमीलाई के भयो भन्दा नारद विन्ती गर्नुहुन्छ भगवान मलाई अरू कुरा केही भएको छैन व्यास भन्नुहुन्छ प्रभु केही भएको होइन धेरै शास्त्र त्रास गरे तर मैले जब आत्मा सहानुभूति र आत्मा सन्तोष गर्ने प्रकारको आत्मबल भर्ने शास्त्र रचना गर्न सकिनँ यसैको कारणले मलाई समस्या परेको छ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो होइन त्यसो भन्दा तिमीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा काम गर भन्नुभयो के कुरा मेरो जीवन क्रियाकलाप सुन म अघिराडीको जन्ममा दासीको पुत्र नारद थिएँ भन्नुहुन्छ नारद ऋषि मेरो आमाको नाम दासी बाउको नाम आमाले त जान नजाने किन अरूले कहिले जाने को हो मेरो बाउ भन्दाखेरि आमालाई थाहै छैन भने त्यति आमाको छोरो म तर मेरो माताजीले एक दिन सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चार कुमारको सम्हार गर्ने शुभ अवसर पाउनुभयो सनकादी चारवटा कुमारको मेरो आमाले स्याहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो आखिरमा सनकादी चारवटा कुमारहरूको अगाडि मैले जुठो पिठो खाँदा खाँदैमा मेरो मति सप्रियो र म पनि भगवानको भक्ति गर्ने प्रबल आशा राख्ने दावेदार भए तर आमा नमरेसम्मका लागि भक्ति गर्न जान नपाउने आमा मर्दै नमर्ने व्यथा पो आइला तर एक दिन गाई